0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry 2023@gmail.com ते।

0: कोई सच्चा नहीं कोई सुच्चा नहीं, कोई सच्चा नहीं कोई सुच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं कोई उच्चा नहीं, केड़ा है जेड़ा लुच्चा नहीं, पर जना खणा ए कहिंदा है आपां हां बंदे कुछ होर साब दे। आखणगे मूंह ते कहने आ नाले पिट पिछे भी करदे है, ना किसे दा सहने आ ना ची ची भी करदे है, माड़े दी पगड़ी लाउंदे आ तगड़े मूहरे ला के तरदे है, उंज जने खणे नूं कहिंदे है आपां बंदे आ कुछ होर साब दे, आपां बंदे आ कुछ होर साब दे। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, मैं तुहाडा होस्ट ते तुहाडा दोस्त रेडियो प्रोग्राम सबरंग दा सूत्रधार डॉक्टर दर्शनदीप हाजर हां सोमवार तो लैके शुक्रवार तक पेश हुंदे रेडियो प्रोग्राम सबरंग नूं लैके, जिस नूं तुसीं सुणदे हो, जिस नाल तुसीं जुड़दे हो, जिस नूं तुसीं मानदे हो, 10 बजे तो लैके 11 बजे तक 5:30 AM दी फ्रीक्वेंसी दे उपर, जिथे मेरे दोस्त मित्र भैण भरा वखरे वखरे प्रोग्रामां नूं जो होस्ट करदे ने, सवेरे 4 बजे तो लगातार तुहाडा मनोरंजन करदे ने, देश विदेश दीआं खबरां दे नाल तुहानू अपडेट करदे ने, तुहानू पंजाब पंजाबी और पंजाबी दीआं गल्लां बातां वी करदे ने, गीत संगीत दे नाल वी जोड़दे ने। सो साडी वारी आउंदी है इस वेले 10 बजे तो लैके 11 बजे तक, साडी वी कोशिश हुंदी है कि उहनां दोस्त मित्रां भैण भरावां नूं जिहड़े हजारां किलोमीटर दूर अपने पंजाब तो टुट के इत्थे कैनेडा दे विच बैठे ने, अपने दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं मिस करदे ने, अपने पंजाब नूं मिस करदे ने, वो अपने बच्चों के सुपनों नूं साकार हुंदा देखण लई इत्थे उन्हां दे नाल रहण दे लई आए हुए ने, ते साडी कोशिश है उन्हां नूं उस पंजाब दे नाल जोड़ के रखिए, उस पंजाबी मां बोली दे नाल जोड़ के रखिए, उस पंजाबी सभ्याचार दे नाल जोड़ के रखिए। सो यह उपराला है विश्व पंजाबी सभा का रेडियो प्रोग्राम सबरंग दे राही, रेडियो प्रोग्राम सबरंग दे नाल नाल तुसीं पढ़दे हो ऑनलाइन पंजाबी अखबार विश्व पंजाबी सांझ, जो पंजाब तों पबलिश हुंदा है, और शाम नूं तुसीं रोज पढ़ सकते हो क्योंकि उत्थे इस वेले सवेर हो गई हुंदी है, ते उत्थों अखबार जिहड़ा प्रकाशित हो जांदा उस नूं अपलोड कर दिता जांदा, तुसीं उस दी ऐप डाउनलोड करके उस नूं पढ़ सकते हो। VPS24.ch 24 घंटे सत्तों दिन चलन वाला IPTV चैनल, तुसीं IPTV चैनल दे पंजाबी सैक्शन दे विच जा के साडे IPTV चैनल दे नाल जुड़ सकते हो। VPS24.hd भरोगे तो तुसीं साडे IPTV चैनल दे नाल जुड़ जाओगे, जिथे तुसी देखते हो पंजाबी दियां क्लासिक, पंजाबी दियां पुरानियां, पंजाबी दियां नवियां, पंजाबी दियां लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्मां, और इस दे नाल नाल विश्व पंजाबी सभा दियां जिन्हां जिन्हां देशां दे विच इकाइयां ने उत्थे जो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन्हां दी रिकॉर्डिंग साढ़े कोल पहुंचती है, तो असी उस रिकॉर्डिंग नूं साढ़े IPTV चैनल के उपर अपलोड करते रहते हैं। सो विश्व पंजाबी भवन पंजाबियों नूं समर्पित आधुनिक सहूलतां दे नाल लैस ब्रम्पटन दा इको एक ऑडिटोरियम, जिथे तुसी भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होए पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत नाल संबंधित, तो तुहानू भी उस दीआं सर्विसिज जिहड़ीआं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकदीआं ने। सो 2-4 अक्तूबर नूं विश्व पंजाबी भवन दे विच विश्व पंजाबी कानफ्रेंस हो रही है, 3 दिन दा साहित्यक और सभ्याचारक मेला जिहड़ा लगन जा रहा, तुहानू सारे दोस्तों मित्रां भैन भरावां नूं उत्थे आउण दे लई खुल्ला सद्दा, तुसीं उत्थे आओ, तुसीं साहित दे नाल वी जुड़ोगे, तुसीं पंजाबी कविता दे नाल प्यार करन वाले बहुत, 2 दिन पूरा कवि दरबार भी असीं ऑर्गेनाइज करना है 2 तरीक नूं और 3 तरीक नूं शाम दे सैशन दे विच, और तुसी आओ, तुहानू सारयां नूं उत्थे खुल्ला सद्दा है, सवेर दा तुहाडा नाश्ता उत्थे होएगा, दुपहर दा खाना भी होएगा, रात दा खाना भी होएगा, तुसी जरूर कुछ ना कुछ उत्थों जरूर खट के जाओगे, फायदा उठा के जाओगे, दोस्तां मित्रां भैन भरावां नूं मिलन दा भी बहुत अच्छा सबब हुंदा है। सो 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है, 647-367-5353 647-367-5353 647-367-5353। सो मोबाइल अपने अपने चुको ते फोन करो, आपां कोई ना कोई गलबात अगे तोरांगे, अज नवी गलबात, अज वीकेंड तुसी इंजॉय करके आयो अपने भैन भरावां दे नाल, दोस्तां मित्रां दे नाल, अपने परिवारां दे नाल, ते मौसम दा अगे नालों काफी फर्क पै गया, इस वेले टैंपरेचर अज है 13 डिग्री, ते दिन वेले अज टैंपरेचर रहा 16 डिग्री तक रहा, 21 सितंबर अज तरीक हो गई, सोमवार दा अज दिन है। ਸੋ ਨਵਾਂ ਵੀਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਏਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
1: ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ,
1: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜੀ
0: ਜੀ,
1: ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਪੱਕਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ,
0: ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
0: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਣਾ ਸਹਿੰਦੀ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ।
1: ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ
1: ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਇੱਕ ਕੋਈ ਠੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟਿਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ,
1: ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
0: ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲਓ ਲਓ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਲੈ ਸੁਣੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
4: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई होंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिस

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: आपां हुणे करदे आं संधू साहब नाल गल ते करदे आं मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: कनाडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लाई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
3: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक लिया के थोड़ी कार केटरिंग की सर्विसेज दिन देने
2: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
3: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 6473389172।
4: ओए ट्रक काला लिया जदों देखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
5: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसिसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
6: इथे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
5: कॉल करो जे एन गैरी नूं
6: 905-459-5533
5: 905-459-5533 ते
6: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
7: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ L ਸ਼ੇਪ, ਰਾਊਂਡ ਸੋਫੇ, ਪਾਈ ਸ਼ੇਪ, U ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੋਫੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ

0: वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है।
1: ओए ट्रक काला लिया जदों देखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
0: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
1: इत्थे टी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533
1: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कांटेक्ट करो। थोड़े कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कांटेक्ट लई नंबर है 6472927557 6472925757।
3: रात हम छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
4: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
3: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया GTA दे विच 4 लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
4: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्रीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। बतेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: जेकर तुसी अपने ट्रकां दा ऑयल चेंज कराना चाहुंदे हो जां कोई लीकेज डैमेज ठीक करानी है ते ट्रकां नूं वॉश वी कराना चाहुंदे हो तां ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 24/7 सर्विस प्रोवाइड करदे हन। इत्थे कैमरे लगे हुए हन जिस करके ट्रकां दे चोरी होण दा कोई खतरा नहीं है। साल दे 365 दिन तुहाडी सेवा विच हाजर ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 905-452-9955 905-452-9955।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦੂ ਬੰਸਰਾ ਜਾਨਸ
0: ਟੋਰਾਂਟੋ
2: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
3: हासिल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
4: गुरबानी रेडियो भी है डिलीवरी बिल्कुल फ्री हो दस क्या चाहिए
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
4: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलो वीडियो.com

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Hello. Kataria Tours and Travel.
1: Hanji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tickets chahidiyan si.
1: Oh, India ki tusi jitthon marzi diyan tickets le lo. India kithe jana?
2: Char tickets Delhi diyan te do Amritsar diyan. Mil jangiyan?
1: Mil jangiyan. Bilkul mil jangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tickets kadon diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Parosiman service te sab to vadhiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 9056 9056781200 Kataria Tours and Travel
3: 32 55 80
4: ते 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने
4: हो काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: news desk. Locally covered, nationally connected.
1: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेट वाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखिंदर साहब वतनों दूर तुहाडे लई पेश करनगे। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर सेम रहणगे 9057990999 905-799-0999। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है जी। अज सूरज सिंह 704 ते आया, 716 ते चले जाना। मामा चंद सिंह अज शाम नूं 5:33 ते आएगा ते सवेरे 2:28 ते चले जाएगा। अज इस गोना बी बिट निपी और टेम्परेचर गोना बी अराउंड 18-19। सूरज चमकता रहेगा। कल 19 डिग्री सूरज दे नाल बदलवाई भी रहेगी। थर्सडे नूं सूरज चमकता रहेगा 19 डिग्री, फ्राइडे नूं सूरज चमकता रहेगा 20 डिग्री, सैटरडे सूरज चमकता रहेगा 22 डिग्री, संडे सूरज चमकता रहेगा 23 डिग्री। मींह दा कोई नाम नहीं है।

0: 1530.ca.
1: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजल महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सुलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें, हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
2: 530. न्यूज़, व्यूज़, गीत, संगीत, हास्य, ठट्ठे दे लेके रंग तहाड़े रूप

0: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
0: और विजिट insuranceforyou.ca।
2: दोस्तों देश प्रदेश से प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।

0: लगाओ।
1: रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना महंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना महंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना महंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मर गई ब्रोकर बहुत गरीबों। दोस्तों सिमराल सिद्धू हो रही ताड़े फाइनेंशियल प्लानर ने इंश्योरेंस करवानी है गया, लाइफ इंश्योरेंस करवानी है गया, कोई भी तुसी 70 डेल्टा पार्क इन ऑफिस है, नंबर 416-457-3381
5: जी। ते तुसी सोफा मार्टन कैसल लेदर लाइन दे नाल भी जरूर गलबात करो, जे तुसी अपने घर दे विच पूरे कैनेडियन मेड बेडरूम सैट्स मैट्रेसिस ते कस्टमाइज सोफा सैट्स लाउणा चाहुंदे हो। फैब्रिक दे सोफे दे विच तुहानू काउंटलेस कलर ऑप्शंस मिलदियां ने, लैदर दे सोफे दे विच 50 प्लस कलर चॉइसिस मिलदियां ने। इह पिछले 28 सालां तों तुहानू कैनेडियन मेड सारा फर्नीचर तुहानू अंडर वन रूफ दे रहे ने। ते तुसी इन्हां दे वेयरहाउस विजिट करके फ्रेम एंड फोम दी क्वालिटी भी चैक कर सकते हो। पहुंचो तुसी 24 रोड एंड 120 डेल्टा पार्क बॉलीवुड, नंबर है 905-803-8056, 905-803-8056 या 905-799-8056। सोफा मार्टन कैसल अदर लाइन का नंबर है।
4: जगदीश होर ने सुनना चाहिए गुरदास मान होर की हीर, लो पेश अभी हीर।

first or second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015